Kandamahalu, Ashangra Pashing, Ashangra Pashing, Warana Warja. Warana Warja, Sriya Sushali, Zalaka Dekhi, Lagure Dapela, Yakaya Swata, Bhudrukai Handa, Bhudrukai Mariuni. Karakurukra, Mareka Muruk, Kataina Bara, Lagure Dapela, Kandamahalu. गाड़ा महालियो मारे कामुरु पारे रलायो बायरा मानिकली ये थोत्री बुड़ी के चीज़ लियानी खोया खानी मोर के कुछ जीवन

इत्यादि मसाला सर्वजीव राख्यो ततिर मतिर ततिर मतिर कठिन पर चौटा फुभुट्यो काकारीका झ्यालामा बसी मौरली झुरा नमालाई पहाड नमालाई मधेस लागुरी भिना